0: दूसरे चंदा भी
1: हाँ ये नाम से ले तेरे चुना दे भी आमा से ना चोट पहुँचे मित्र सागा ला नाम से चुना दे बा
2: पहुँचे तो जे चोट गिर पड़ता